0: मैंने जाना तुम जमदीरा से बरो मैं खाना लगती हो.
1: Where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

ज्यादा ना सुना कर उनके, तू ज्यादा ना सुना कर उनके, बस अपने ही किया कर मन के, बस अपने ही किया कर मन के। देख तुझे जलती है जिनकी, हाँ देख तुझे जलती है जिनकी, क्यों फिक्र करें, क्यों फिक्र करें फिर तू।

महकती है सदियां, खुशबू का दर है ये शहरे मोहब्बत, मेरा हम सफर है केसर के रंगों को ओढ़े है शब भर, है दिलचस्प बातें, है दिलकश ये मंजर।

0: थोड़े चा ते बहुते दर्द जो दिल दे विच लको गया है। लै मां तेरा सियाने वर्गा पुत परदेसी हो गया है, परदेसी हो गया है।
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

0: कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।
1: Hey Sink, are you there?

0: तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल जमाने में, दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

चले तू ले ले पूरा दिन हो तैयार तू घंटे न गिन मैं हूँ यही एच सर्विस टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट हाथ मेरा साम लेट मी मेक यू स्माइल आई लाइक योर स्वैग यू लाइक माय स्टाइल देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ जब भी होती लो तू मेरा नंबर करे डाल मैं हूँ तेरे साथ साथ तू है मेरे संग साथ तेरे साथ टाइम की खबर न लगे किसी भी चीज में कसर न लगे मांगू दुआ यही नजर न लगे बेबी ऐसे हमत हमें क्या मत नो तुम मुझको मिली है ए, ये है मेरी किस्मत।

जब तू साथ नहीं होती तड़पता मेरा दिल है, मेरी रग रग में लहू के साथ साथ तू भी शामिल है।

0: your culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

लावल जाओ। आपको सूचित किया जाता है कि ये गाना सुन के काफियों की फटकर चार होने वाली है, इसीलिए ये गाने को अंदर खाते में ही सुने। धन्यवाद जी।

कुछ गल्लां दस सकदा, कुछ दस के भी समझ नहीं आनी। कुछ तेरियां ने, कुछ मेरियां ने, तेरा मिलना तेरा विछड़ना। तू कदे परछावे तो नेड़े, तू कदे सब तो दूर। तेरा हासा तेरा रोना, ते कदे कदे एकदम चुप होना। सब कुछ जो तेरे नाल रह के निक्की निक्की चीज नू जीना सिखिया, निक्कियां चीजां च खुश होना सिखिया, उच्ची उच्ची हसना सिखिया, दिल च की चल रहा तेरे नाल शेयर करना सिखिया। हां खुशी है मैनू तो जिंदगी किदां जीनी है ए दसिया, पर अफसोस तेरे बिना किदां जीनी है किते ए नहीं दसिया। गल हुण संघणी धुप दी गर्मी ते रातां दी त्रेल तक है, दुनिया जितन ते हारे हुए खेल तक है। ए मेरी खुद दी बनाई दुनिया, जिदा एक हिस्सा बना के थोड़े हिस्से कर लग्या। विद माई फर्स्ट ईपी एडिक्शन।

सुरमा सुरमा सुरमा कुड़िए अखा वाला जहर कुड़े दिन विच लगे रात रात जई बनकी सिखर दोपहर कुड़े पैंदा ए लचकारा।